0: माटे मिलाता के पानी तो मिलाता
1: सानो मा ढुंगो लायो टाइरा पालता ठुलो